101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि तदनुसार 13 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को है, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में

0: व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इंकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंडिक 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार है गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए इस श्रृंखला का 13वां भाग। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात

माफ कीजिएगा, आज शाम 6:45 पर 7 बजे सुनिए भूले बिसरे की। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर कार्यक्रम पेश होगा आज के फनकार। कार्यक्रम आधारित है अभिनेत्री वैजंती माला पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे आज के मेहमान में लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश में। संवादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेकी की। 9 पुराने कार्यक्रम सुनिए 5:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुरवे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। 8 बजे सुनिए हवा महल में झल की तमाशा। लेखन निर्देशन है गुरमीत रामल मीत का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए और 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि

0: आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्जापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम रंग श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीजें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी
1: जी, कजली देवी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध
0: जी
1: इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीजें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा।
0: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना, और वाकई मन में फिर हूक उठने लगती है। फिर वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
1: जी बिल्कुल,
0: वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
1: जी जरूर
0: खुल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
1: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
0: कितनी अनूठी बात है
1: जी। हाँ। पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है, तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा,
0: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो वो कहती है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा।
0: वाह।
1: धानी किनारी होनी चाहिए।
0: हाँ।
1: बॉर्डर जो है वो धानी रंग का होना चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा।
0: वाह।
1: भीग गई चुनरी वर्षा में, रिम झिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।
0: बहुत खूब।
1: झूले भी पड़े हैं,
0: वो भी डाली डाली।
1: हाँ, हर डाली पे झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया, उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है। झूली झूली झुलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा।
0: वाह।
1: तो ये
0: वाह
1: चीज आपको सुनाना चाहिए।
0: वो नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती है। शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है,
1: भाषा का ज्यादा भेद है। जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली, और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
0: चार कोस पे पानी बदला, आठ कोस पे पानी
1: बदली
0: इस तरह से।
1: और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
0: जी,
1: वो अलग अलग बदलती जाती
0: तो
1: है।
0: अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है
1: जी,
0: जो शब्द बताए हैं वो मिर्जापुरी,
1: ये भोजपुरी कजरी है
0: जी
1: जी।

0: सुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यही रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर। कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में करते हैं स्वागत। श्रोताओं, आज है विश्व अंगदान दिवस। जी हाँ, जीवन के बाद भी जीवन, एक ऐसा दान जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज का यह कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे विषय को जो केवल चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है बल्कि मानवता, संवेदना और जीवन के सम्मान से जुड़ा विषय है। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ दूसरों को देते हैं, अपना समय, अपना प्यार, अपनी मेहनत, अपनी मुस्कान, लेकिन क्या हम अपने जाने के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी छोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं और वो है अंगदान के माध्यम से। आज हम बात कर रहे हैं विश्व अंगदान दिवस पर, एक ऐसा दिन

हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है। हमारे जाने के बाद भी हमारे अंग किसी जरूरतमंद के जीवन में नई उम्मीद बना सकता है। श्रोताओं, जिंदगी एक उपहार की तरह है, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। मेरी आंखों में जो रोशनी थी वो किसी की सुबह बन सकती है, और मेरे दिल की जो धड़कन थम जाएंगी वो किसी और के लिए जीवन दे जाएंगी। मेरे जाने के बाद भी अगर किसी माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए उम्मीद लौट आए तो हर्ज ही क्या है। अगर किसी बच्चे को फिर से दुनिया देखने का अवसर मिल जाए तो शायद मेरा जाना सिर्फ अंत नहीं होगा, किसी और की जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत होगी। तो श्रोताओं, इस विषय पर हम आपसे बात और भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से गीत के बाद।

श्रोताओ, हम आपसे बातें कर रहे हैं आज विषय विश्व अंगदान दिवस के बारे में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अंगदान है, होता क्या है। श्रोताओं, अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंगों या ऊतकों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए दान करने की इच्छा व्यक्त करना। कई बार होता है कि कई बीमारी, ऐसी गंभीर बीमारियां व्यक्ति जूझ रहा होता है कि उसके लिए जरूरी होता है कि अंग प्रत्यारोपण जीवन ही उसको बचा सकता है। कई बार किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े जैसे अंग और कुछ ऊतक जरूरत के अनुसार प्रत्यारोपण में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन अंगदान केवल चिकित्सा की बात नहीं है, यह एक विचार है। जी हाँ श्रोताओं, कुछ जरूरी है कि हम ये सोचें कि हमें अपना जीवन किस तरह से आगे के लिए भी व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि मेरे बाद भी किसी को जिंदगी चलती रहे, किसी की जिंदगी चलती रहे, किसी का परिवार चलता रहे, तो फिर कहना ही क्या। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी कि परिवार, एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक बच्चा था बहुत चंचल और बहुत ही प्यारा। वो हमेशा अपनी माँ से पूछता था कि माँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, और माँ मुस्कुरा कर कहती, तुम जो चाहो वो बनना। लेकिन एक दिन किसी गंभीर बीमारी के कारण उसकी जिंदगी ही बदल गई। उसे एक ऐसे अंग की जरूरत थी जिसके बिना उसका जीवन खतरे में था। ऐसे में माँ अस्पताल के गलियारों में बैठी थी, आंखों में आंसू थे और हाथ में प्रार्थना के लिए ही सिर्फ जुड़े हुए थे, और बस यही कह रही थी, भगवान मेरी बच्चे को बचा लीजिए। उसी समय कहीं एक परिवार ऐसा भी था जिसने अपने प्रियजन के जाने के बाद अंगदान का निर्णय लिया था। एक परिवार ने अपना प्रिय खोया और दूसरा परिवार को जीवन की उम्मीद मिली। किसी के घर में एक दिन दुख था, लेकिन किसी दूसरे के घर में जीवन लौट आया था। यही अंगदान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कभी कभी एक परिवार का सबसे कठिन निर्णय किसी दूसरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। एक पल के लिए जिसकी आंखें बंद हो गई थी, कि सोचिए, आप सोचिए कि वो कितने खुश होंगे कि अपने बच्चे को अपनी अच्छी सी जिंदगी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में सोचिए कि कोई माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य होने की प्रतीक्षा कर रही है, कोई पिता अपने बेटे के लिए उम्मीद लगाए बैठा है, कोई बच्चा चाहता है कि उसकी माँ फिर से उसके साथ रहे। किसी परिवार की उम्मीद किसी अनजान दाता के निर्णय से जुड़ी हो सकती है। और दोस्तों, हम अक्सर ये कहते भी हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं, लेकिन अंगदान हमें यह अवसर देता है कि यादों के साथ किसी के जीवन में हमारी वजह से एक नई सुबह हो जाए। और दोस्तों, दान ऐसा हो जो किसी को जीवन दे जाए, क्योंकि दान अगर करना है तो ऐसा दान करो जिससे किसी की बुझती हुई आशा में जान भर जाए। धन दौलत तो छूट जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी के जीवन में अगर उजाला कर गए तो इंसान इस दुनिया से जाकर भी हमेशा याद रह पाएगा। आंखें किसी को रोशनी दें, दिल किसी की धड़कन बने, जिंदगी की इस यात्रा में किसी के लिए जीवन बने। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर और आज का हमारा विषय है विश्व अंगदान दिवस। श्रोताओं, जरूरी है कि अंगदान को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं उन्हें हम खत्म करें। जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि हम विश्वसनीय और आधिकारिक चिकित्सा जानकारी पर भरोसा करें। अंगदान के नियम, पात्रता, सहमति और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया देश और परिस्थितियों के अनुसार

निर्धारित होती हैं। इसलिए यदि आप अंगदान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या अंगदान की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ सबसे पहले बात करें और अधिकृत स्वास्थ्य संस्थाओं या सरकारी अंगदान प्रत्यारोपण व्यवस्था से सही जानकारी प्राप्त करें। श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंगदान का निर्णय समझदारी, उचित जानकारी और परिवार की जानकारी के साथ ही होना चाहिए। एक सवाल आप अपने आप से करें, क्या करना है? आज मैं आपसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछूंगी, बस एक छोटा सा सवाल कि अगर हमारे जाने के बाद हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी दूसरे इंसान को जीवन दे सकता है तो क्या हम इसके बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। तो श्रोताओं, क्या हम अपने परिवार से इस विषय में बात करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार हमारी चुप्पी के कारण हमारे परिजन भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए श्रोताओं, आज आप सभी अपने परिवार के साथ बैठिए और इस अंगदान विषय के ऊपर बात कीजिए, जानकारी लीजिए, समझिए और फिर अपना निर्णय सोच समझ कर लीजिए। क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी सांसें रुक जाएं, फिर भी किसी की सांसों में मेरी उम्मीद बची रहे। मेरी आंखें बंद हो जाएं, पर किसी की दुनिया को मैं रोशन कर जाऊं। मेरी धड़कन थम जाए, पर किसी का दिल धड़कते रहना चाहिए। जिंदगी छोटी हो या बड़ी, मायने यह रखता है कि हमें अपने जीवन से किसी के जीवन में कितनी रोशनी बांटी है। ये जरूरी है कि अंगदान केवल अंगों का दान नहीं, यह उम्मीद का दान है। यह उस माँ के लिए उम्मीद है जो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। यह उस पिता के लिए उम्मीद है जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है। यह उस छोटे से बच्चे की उम्मीद है जो अभी जिंदगी की किताब के कई पन्ने पढ़ना चाहता है। और शायद यह हमारे लिए भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन के बाद भी किसी के जीवन में अपना छोटा सा योगदान छोड़ जाएं। हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन जाते जाते अगर किसी के लिए जीवन की राह आसान कर गए तो इससे बड़ी मानवता क्या ही होगी।

श्रोताओं, आज हम एक संकल्प लेते हैं। हम अंगदान के विषय में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समाज में फैली गलत धारणाओं को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर बातचीत करेंगे और यदि हम अंगदान करना चाहते हैं तो अधिकृत माध्यम से उचित प्रक्रिया और सहमति के बारे में जानकारी लेकर ही निर्णय करेंगे, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति, एक जागरूक परिवार और एक जागरूक समाज किसी के जीवन में उम्मीद बन सकता है। जीवन का अंत हमारे हाथ में नहीं, केवल जीवन के बाद है। हमारी कहानी कैसी रहेगी यह कुछ हद तक हमारे विचारों से ही तय करता है। कोई हमें फूलों से याद करे या कोई तस्वीरों से, और कोई ऐसे भी करे कि हमें हमारे जाने के बाद हमें जीवित रखे दूसरे के शरीर में। जी हाँ, अपने जाने के बाद भी मुझे जीवन मिल जाए, क्यों ना ऐसा कुछ काम करें। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि अंगदान किसी पर थोपा जाने वाला निर्णय नहीं है, यह व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे सही जानकारी और उचित सहमति के साथ ही लेना चाहिए। लेकिन इस विषय पर बात जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक बातचीत किसी परिवार को सही जानकारी दे दे, आपका एक जागरूक निर्णय किसी के लिए उम्मीद बन जाए और आपकी संवेदना किसी अनजान इंसान की जिंदगी में एक नई सुबह ला दे। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बस आपसे एक बात कहूंगी कि जिंदगी हमें मिली है, इसे खूबसूरत बनाना हमारे ही हाथ में है। हम अपने जीवन में कितने लोगों की मदद करते हैं, यह हमारी इंसानियत ही बताती है। और हमारे जाने के बाद भी अगर किसी के जीवन में उम्मीद बची रहे तो उससे बड़ा मानवीय संदेश और क्या हो सकता है। एक जीवन की कीमत बहुत बड़ी है और किसी की जिंदगी में उम्मीद बनना उससे भी बड़ा उपहार है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम से। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म द ट्रेन का ये गीत।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म द ट्रेन से, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में फिल्म किनारा का ये गीत।

0: हमारे चैंपियन नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और आइए अब सुनते हैं प्रेम पर्वत का ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म बरखा के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को

0: भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतर्राज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलकर आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण

0: प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिन हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद

0: सद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रही स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे
2: जी।
1: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के।

0: लिए स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
1: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
0: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
1: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
0: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
1: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
0: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कोल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
1: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
0: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
1: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
0: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के

0: करते हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
1: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता

0: लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे।
3: हाँ, हम हर प्रकार के अत्याचार हैं।

0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
1: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
2: यस सर,
1: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
3: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
1: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
2: थैंक यू सर।
1: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा।
0: घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
1: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
2: यस सर,
1: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
3: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
1: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
2: थैंक यू सर।
1: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
3: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
1: सिपाही।
2: यस सर।
1: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
2: यस सर।
4: भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे। फिर कुछ देर बाद

0: चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
1: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
2: हवाले कर दे?
1: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
3: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। सुबह के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये प्रतिष्ठित कलाकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली तथा अन्य संबंधित प्रदर्शन कलाओं से जुड़े हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन भवन में होने वाली लॉटरी में प्रदेश की 309 नगर निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉटरी में सबसे पहले अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आखिर में अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। हर वर्ग में एक तिहाई निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

0: संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खनिज और खान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इससे पहले कल संसद में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में पहले ही इसे पारित कर किया जा चुका है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: इस बीच संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के 22 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। इनमें सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर भंवर सिंह और AGTF CID के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक तथा कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को भी उनकी सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। योजना के तहत 10 अगस्त तक प्रदेश में 77,814 कार्यों पर 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। ये संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों से 2,22,000 अधिक है। योजना के तहत वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख से अधिक कार्य GIS आधारित पोर्टल पर शामिल किए गए हैं। राज्य में 1 जुलाई को शुरू हुई इस योजना के जरिए हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने कुल 12,636 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में सदस्य देश आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ने निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के बजाय निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में नवनियुक्त सीएल

0: सदस्यों से संवाद करेंगे। राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में सीएलजी सदस्यों को उनके दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। जयपुर संभाग के नव नियुक्त सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हनुमानगढ़ में सेफ सिटी अभियान के तहत पुलिस और छात्रों के बीच विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी पोर्टल के माध्यम से संवेदनशील और संदिग्ध स्थानों पर पुलिस की निगरानी जारी है और युवा भी इस अभियान से जुड़कर समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
1: ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद हमारे पास खूब इनपुट सारे हैं, वो करीब 3 दिन हो गए। 3 दिनों में 50 से अधिक हमारे पास इनपुट पोर्टल पे आए हैं। उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें पिछले 20 दिनों में एटलीस्ट 200 to 250 इनपुट हमारे पास आ चुके रहे। पब्लिक उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तुरंत हमें सूचना दे रही है और हमारे सेफ टीम जो है वो मौके पे भी जा रही है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि पब्लिक हमें सूचना देना चाह रही है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे सूचना हम तक आ सके। लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जितना सूचना पब्लिक से सोसाइटी से हमारे पास आए तभी हम नशे के खिलाफ और इफेक्टिव एक्शन ले पाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में 53.8% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। विद्यार्थी डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल की आवाजों में अनविता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंती माला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंती माला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: देश में एक दासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।

0: कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।
0: वो ना।

देवदास के लिए वैजयंती माला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंती माला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंती माला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलत ना ही सारे से की निकाल दे एक मिनट में।
2: अरे वाह रे महारानी वाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है पटेरे, एक को समझाए दियो
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हट रे, हट।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे कच्चा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंती माला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

0: सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।
1: ठंडी

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प।
2: आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
0: और आइए अब सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
3: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
4: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
5: बिल्कुल,
4: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया।

0: और उसके बाद वो मना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो,
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म, शंकर जयकिशन।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, क्योंकि शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए।

0: तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से। 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा
1: मतलब
0: नहीं
1: है?
0: आएगा। हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात होगी ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए हैं, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश ने,
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये
1: हैं।
0: सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया? इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी। एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोचे चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
0: Right.
1: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
1: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि

0: आता है इसको,
1: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
0: अच्छा,
1: तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते हैं। तो मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताएगी, ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे।
0: हाँ,
1: तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड
0: आएगा।
1: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
0: लिखने,
1: इन आउट तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, वीएफएक्स भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना,
0: बिल्कुल
1: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कानून
0: से छूट जाते हैं, लूज बाद में ऐसे ऐसे छूटते हैं
1: जो बाद में आप ना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
0: बिल्कुल।
1: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए।

0: क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, पॉलिटिक्स क्या है
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के पहले।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
1: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। Taking the chance to make you dance. You will move your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Tequila?
2: No!
1: Tango?
2: No!
1: Charleston?
2: No!
1: Polka?
2: No!

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग की है, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली, वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा, वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
0: गजब।
1: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए
0: बिल्कुल।
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
0: वाह वाह।
1: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक।
0: वाह
1: जब
0: वाह।
1: डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलिंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
0: गजब।
1: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वरना हम
1: सब
0: अपने
1: सब
0: सुनने
1: सब
0: वालों
1: रोमन
0: को बता
1: सब
0: देंगे
1: रोमन में
0: सब
1: पढ़ते
0: लोग
1: हैं,
0: रोमन
1: सब
0: में
1: रोमन
0: मानते
1: में
0: हैं।
1: पढ़ते हैं।
0: जी
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे, तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है, तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो
0: क्या
1: वो
0: बढ़िया
1: एक
0: बात
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में, ये संवादों को देवनागरीकरण किया था
0: है।
1: रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक

0: समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये सब क्लिशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो एस एस राजामौली के साथ किया, तो बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे, तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने
1: वाह।
0: अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती
0: कहीं
1: है।
0: कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया, मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो,
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं
0: मिलता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया, मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच में मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो, वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहा
0: बहुत
1: है।
0: सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है, एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा।

0: एक कॉमिक्स अभी अभी ख़त्म किया करके, जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफ़ी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं दो किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनाने शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है, तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: चाचा चौधरी पे शोभा। हाँ, मतलब कई
1: बार डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
0: हाँ,
1: तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिनपे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनपे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है। जो इवॉल्व वो हो रहा है, बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है।
0: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया भाई। मैं जैसा कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है। तो मेरे लिए घर वापसी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और क्या कहूँ मैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं
1: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
0: आज के

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: वंदे मातरम, वो अमर उद्घोष जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का आधार बना, जिसे सुनकर और गाकर आज भी हम अपनी माँ भारती को साक्षात अनुभव करते हैं।

0: लगभग 10 मिनट अवधि का वंदे मातरम का ये शास्त्रीय गायन पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के स्वर में भारत की स्वतंत्रता के प्रथम सूर्योदय यानी 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। भारतीय स्वातंत्र के अमृत महोत्सव आयोजन के इन पावन और प्रेरक क्षणों में आइए मिलकर सुने ये पूरा गौरव गान इस 15 अगस्त प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी पर।
1: और आइए अब सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा की आवाज़ें, शौकत अली ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा, इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था, जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजले का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से, हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदनदास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने से लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,800

0: 43 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

0: 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दिन के ठीक 12:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 14 अगस्त 1947 के रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस पर त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: इस संदेश के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैया राजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में नागिन माफ कीजिएगा नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा, हवा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: थैंक यू।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, अधिकरण सुधार विधेयक, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के 603 लाभार्थियों को आवास आवंटन की चाबियां सौंपी। इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण के 473, कोटा विकास प्राधिकरण के 50 और जोधपुर विकास प्राधिकरण के 80 आवास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्का घर मिलने से इन परिवारों के नए जीवन की शुरुआत हो रही है और सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आवास के साथ इन परिवारों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने का भी काम करेगी। समाचार पढ़े जाने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। स्वायत्त शासन भवन में चल रही इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश की 309 नगर निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय किया जा रहा है। लॉटरी में अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकायों का चयन किया जा रहा है। राज्य में 400 सीएम राइज विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने जयपुर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विशेषज्ञों को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार परक प्रशिक्षण और भावनात्मक विकास का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल छोड़ने की समस्या रोकने और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में आज सभी जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि कल से बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना है। इस बीच सवाईमाधोपुर में सुबह हल्की बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में जमकर बादल बरसे। भीलवाड़ा, सलूम्बर और उदयपुर में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक 14.5 सेंटीमीटर पानी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बरसा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। अच्छी बारिश के बाद बीसलपुर बांध में पानी पहुंचाने वाली त्रिवेणी नदी इस मॉनसून सीजन में पहली बार तेज बहाव के साथ बहती नजर आई। नदी का गेज 3 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। इससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच

है। लगातार बारिश और नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने चंबल से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की यह संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके स्मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों के रुंझन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है। शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां पी

कहां बोलते, बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे गौर साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने या फिर पानी पीने या अवसर पैर डुबाकर उस जल को महसूस करने का कोई काम किया है। किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है।

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर गीता दत्त की आवाज से। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बता रहे, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति

इसके लिए काम आती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है, यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाजों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुरताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरी प्रकृति से लोगों का मन मोह लेती है, और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदें प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती है तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है, एक हल्की से नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत न किसी सभा में बजता है, न किसी स्टेज पर जहां हम रुककर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भरकर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत। हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूँ। वहाँ हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहाँ की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहाँ की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानंद में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदें, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सके। आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाव विवल हो जाते हैं और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्दी ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूँ हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूँ, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छिड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायल

के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल हैं जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए। और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कलकल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है, लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा, या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सबसे रखने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है, कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है

से अनुभव अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत, यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है। संगीत के आदि स्रोत भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा, वो कह रहे हैं छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत की मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई। डरी सहमी सी कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस नन्ही गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ सेकंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई। गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षण भंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार की सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम शोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम शोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

सपने फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मासर देसाई और मलेशिया की आवाज उम्मीद जावेद अख्तर ने से लिखा ए आर रहमान का संगीत और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी वो कह रहे हैं कि आज

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

0: किरदार।
1: मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं। और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किस

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्रकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव भोर कर देती है। बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीकदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है, महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज होकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूँ, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज में।

0: दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: क्या चाल है तोरी?
0: जरा झूम ले गोरी।

संघर्ष मंच से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चन्ने में कथित नियमितताओं के मुद्दे सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: Minutes regarding your productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open for us to use.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही 35 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17%। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा होगा।
1: संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों में 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं, इन दिनों तो क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती
1: और कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं
2: जी।
1: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें, पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी, और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज सेवा से वो जुड़ी हैं।
1: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
2: जी,
1: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना, लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
2: दुख में गए हैं तो

0: उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना। ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी। और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन।
1: अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है। अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना है, तो उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का ईश्वर की पूजा, पुण्य की तरह पुण्य से जुड़ जाता है। तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं। जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए

0: अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वां भाई को, उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता कितनी है
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे आंख, नेत्रदान।
0: जी,
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म भर लिया जाता है और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है, समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है, करना पड़ता है। तो ये बात हो गई। और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं, लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी। वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं।

0: नेहा
1: जी,
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रही हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक कहानी उन्होंने बता रही है कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचाकर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है
1: जी।
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए, कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं। भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें महानगरों में, आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं, बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल, और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी। जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूं, लेकिन वहां जाने पर देखती हूं कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किससे किनसे उन बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
7: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी, उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
6: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती हैं और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
7: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुकीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
6: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन

0: सेशन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती। तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए, इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रही, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी, और पैट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुकीम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
1: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पैट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
0: जी,
1: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं,
1: क्या कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है, ऐसा ही तो मतलब हमने शुरुआत से ऐसे ही तो सब बड़े हुए हम सब,
0: सही बात,
1: रेडियो सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय,
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात की है।

0: वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मे संग आंख लड़ी। 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, 1 प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई, कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहाँ पर शिष्टाचार की बात है
1: जी, तो लेकिन ममता जी एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी
0: बिल्कुल,
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है, और जिन्होंने नहीं सुना हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है, अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है
1: जी, तो इस शौक से मुक्त होना जरूरी है
0: बच्चे, क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल, और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए, खासतौर से छोटे बच्चों के भीतर कई और हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और बच्चे को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है, कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारे एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूँ, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको, जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली, विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रे गमन फिल्म की गजल, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था, तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो, तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया, और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे, तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए, लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं।

0: होती है और गाना सुनवाने के लिए भी कोई समय
1: नहीं
0: होता, तो सुनते ही गाना देते
1: जब सदा संग रहे ना।

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहां पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल। और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए। और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाए नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है या फिर डिटॉल वगैरह उस पर लगा देना, धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे, या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहने, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है कीड़ा वगैरह काटता है तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल चिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारे हूँ मैं और कल्याणी है, दो बच्चे मेरे और 3 एकड़ जमीन।

0: मैं 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
1: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
0: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था, तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम भी।
1: अच्छा चलो,
0: रेडियो बचपन से सुन रहे हूँ।
1: बिल्कुल सुन रही होंगी, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपनी खेती बाड़ी से समय निकाल के।
0: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
1: अरे क्या बात है।
0: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
1: कराइए।
2: हेलो मैडम।
1: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: हाँ, मीरा भाई है मेरा नाम।
1: अरे मीरा भाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा भाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा भाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते हैं, खेती में भी काम करते।
1: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
1: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास?
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है।
1: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको?
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते है, चार पीते है।
1: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है, लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता है, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
1: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
0: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्री दुदार ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
0: जी जी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
1: जी यह खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। जी
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: तो मुझे गाना सुना दीजिए लता दीदी की आवाज में। जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है साबुन के झूले पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं, तो वही तफ वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
1: नून चाय।
0: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: ये गुलाबी बनते हैं, इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उनपे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी,
0: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
0: बिल्कुल सुनते हैं,
1: मजा आता है।
0: बिल्कुल, बताइए गाना बताइए।
1: मैडम हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दुनिया,
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं।
0: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
0: ठीक है,
1: चार महीने की रहती है दीदी, चार महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हैं उस जगह पर।
0: अच्छा,
1: कई कई किसान करते हैं वैसी खेती।
0: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई न कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए चार महीने ठीक रहती है ना, उप कर लेंगे।
0: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेतीबाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते हैं दीदी, उतना कैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती है।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ, कैसा है जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा,
0: तो एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन का भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देश गान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए काकी।
1: जय स्तुते जय स्तुते श्री महान मंगले वास पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता मंदे यशोयुता मंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, ने मजसी ने परतमा तू भूमि ला सागरा प्राण तरमला तरमला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया आई लव माय इंडिया वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ही गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश,
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनीतपुर आसाम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है,
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव आसाम में हुआ था ऐसे बार, बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये
0: जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनीतपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा,
1: और आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ। और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इससे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और
0: आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है
0: जी। तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: आसाम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है, आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: हमारे असम सबसे ज्यादा सोनीतपुर में ज्यादा फेमस है, जिसका मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं
0: जी,
1: ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को
1: जी।
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में
1: जी। जी जी, वीर जरा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से।
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं। मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुँचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गए जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप। तो
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्क्रीन

0: निकाली तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
1: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए।
0: हमारा बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और सब लोगों को।
1: सबसे बड़ी बात ये है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
0: हाँ मैम,
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागपुर जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, सभी सोचता होगा।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा।

0: और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी, खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं
1: जी।
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही
1: जी।
0: कौन से गाने सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले सूरत में 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन

0: ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಅನೌನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾನೆ ಬಚ್ಚದೆ ಮುಂಬೈ ಔರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಜೋ आज चेन्नई है, वो बाद में वो टेप जाने शुरू हुए।
1: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
0: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
1: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
0: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
1: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
0: रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने।
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं।
0: 77, इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ।
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ,
0: लेकिन इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते।
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: चौधरी का संगीत है, रॉय की फिल्म, शशि कपूर और साधना की अदाकारी है
0: जी। आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है, मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन, उनके ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना? हाँ, जा सकता है निडिल लगा के।
1: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या बात है, चलिए,
1: का काम चल रहा है सारा।
0: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप?
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी सोनिका का प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगी और कर रही होंगी हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार। तो लीजिए, आज हम फिर हाजिर हैं चर्चा के एक नए विषय और नवीन जानकारी के साथ। सखियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर। सखियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें महिलाओं ने भी अद्भुत साहस, त्याग और देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और यह सिद्ध किया कि देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही महिलाओं की भागीदारी शुरू हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने अदम्य साहस से पूरे देश को प्रेरित किया। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हजार

महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सखियों सरोजनी नायडू ने भी महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक महान कवित्री होने के साथ साथ प्रभावशाली नेता भी थीं। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ रहकर सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश फैलाया तथा अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल भी गईं। इसी प्रकार अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो प्रसारण के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाए। वहीं सुचेता कृपलानी ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महिलाओं का योगदान केवल आंदोलन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया, खादी अपनाई और लोगों को जागरूक किया। साथ में सभाओं का आयोजन भी किया और अनेक कठिनाइयों का सामना करती रहीं। अनेक महिलाओं ने जेल की यात्रा भी की, लाठियां भी खाईं और अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ राष्ट्र सेवा का दायित्व भी बखूबी निभाया। आज हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं, तब हमें उन वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। उनका जीवन हमें साहस, आत्मविश्वास, देशभक्ति और समानता का संदेश देता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब महिलाएं किसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो इतिहास बदल देती हैं। तो सखियों, चर्चा के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, प्रेरणादायक थी और अविस्मरणीय रही। उनका योगदान सदैव भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। अब हम आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं जो हमारे समाज की लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा है, और वह है महिलाओं के कानूनी अधिकार। सखियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं सुरक्षित हों, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान, अवसर और अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। आज भी अनेक महिलाएं केवल इसीलिए अन्याय सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कानून उनके साथ खड़ा है। इसलिए कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। तो आइए जानते हैं कानून महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। सखियों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में केवल महिला होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। यदि किसी महिला के साथ घर में मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक रोक टोक या किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो वह कानून की मदद ले सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। सखियों, तीसरा अधिकार है कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा का अधिकार। हर महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। चौथा अधिकार है संपत्ति में बराबरी का अधिकार। आज बेटियों को भी बेटों के समान

पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। अब सखियों, पांचवा अधिकार है दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं और कम उम्र में विवाह करना भी कानून के विरुद्ध है। इसके साथ ही महिलाओं को मातृत्व लाभ का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी दिया गया है। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और विकास के लिए कई योजनाएं एवं कानून बनाए गए हैं। सखियों, अपने अधिकारों की जानकारी ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है और साथ ही अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाती है। इसलिए आवश्यक है कि हर महिला अपने अधिकारों को जानो और आवश्यकता पड़ने पर कानून की सहायता लेने से भी पीछे ना हटे। तो सखियों, आज हमने बात की महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। याद रखें, अधिकार आपका हौसला है और कानून आपकी ढाल। किसी भी मुश्किल समय में आप डरे नहीं बल्कि आवाज उठाएं। आप चाहें तो सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर तुरंत कॉल कर सकती हैं। सखियों, अब समय हो चुका है मनोरंजन का। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। आज हम विविधा के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेय की जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है, और वह पेय पदार्थ है ग्रीन टी। चाय का नाम सुनते ही हम में से अधिकांश लोगों के मन में दूध और चीनी वाली चाय की तस्वीर उभर आती है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि चाय की केवल एक किस्म ऐसी भी है जो बिना दूध के तैयार होती है और प्राकृतिक गुणों के कारण पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, और इसे हम ग्रीन टी के नाम से जानते हैं। सखियों, ग्रीन टी चाय की पत्तियों से ही बनाई जाती है, मगर इसे तैयार करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसमें पत्तियों को बहुत अधिक ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें प्राकृतिक यौगिक बहुत हद तक बने रहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाले हानिकारक मुक्त कणों से बचाव करते हैं। सखियों, ग्रीन टी को स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। ये हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और दिल और दिमाग को भी स्वस्थ रखते हैं। इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में बहुत सुधार होता है। इसके साथ ही ये चाय वजन को भी नियंत्रित रखने में सहायक है। इसमें मौजूद कैटेचिन और थोड़ी सी मात्रा में कैफीन शरीर के ऊर्जा उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि केवल ग्रीन टी पीने से ही वजन नियंत्रित नहीं होता, इसके साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। सखियों, ग्रीन टी दिल की सेहत के लिए भी वरदान है। इसके नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL का स्तर नियंत्रित होता है, और इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें मौजूद कैफीन और एल्थीनाइनिन जैसे तत्व एकाग्रता बढ़ाते हैं, दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं और तनाव से दूर रखते हैं। सखियों, ग्रीन टी ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी

मददगार है। यह इंसुलिन प्रतिरोध को कम करके टाइप 2 डायबिटीज होने से रोकती है। यह एंटी एजिंग भी है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हानिकारक मुक्त कणों से त्वचा की रक्षा करते हैं और साथ ही यह दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं और त्वचा के रोगों का इलाज करते हैं। यह उम्र बढ़ने के विभिन्न संकेतों के खिलाफ भी कार्य करते हैं। सखियों, ये त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों से होने वाली क्षति को भी कम करते हैं। तो सखियों, आज विविधा के अंतर्गत हमने जाना ग्रीन टी के फायदों के बारे में। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगी। इसके साथ ही सुनते हैं एक मधुर गीत।

अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का युववाणी प्रोग्राम और मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आरजे वंशिका। दोस्तों, पहले लोग पूछते थे कि बेटा नौकरी लगी या नहीं, लेकिन आज लोग पूछते हैं कि अपना कुछ शुरू किया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, समय बिल्कुल बदल चुका है। अब तक सक्सेस का मतलब था सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में जॉब, लेकिन आज सक्सेस का मतलब है अपना सपना, अपना आइडिया और अपना स्टार्टअप। आज का यूथ सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि हर दूसरा यूथ बनना चाहता है एंटरप्रेन्योर। तो चलो आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। आज का यूथ हर दिन किसी के ऑर्डर पर काम करने की बजाय खुद डिसीजन लेना चाहता है। उसे लगता है अगर मेहनत मेरी है तो पहचान भी मेरी होनी चाहिए। जैसे एक इंसान ऑफिस में 10 घंटे काम करता है, दूसरा इंसान अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को ये सेटिस्फेक्शन होता है कि वो अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा है। यही सोच आज के यूथ को एंटरप्रेन्योर बनने की ओर खींचती है। पहले सक्सेस सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर में दिखाई देती थी, आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर रोज लोग अपनी सक्सेस की कहानी बताते हैं। जब कोई 22 से 25 साल तक का युवा अपना बिजनेस खड़ा करता दिखता है तो दूसरे युवाओं को भी लगता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जैसे एक यूट्यूबर अपना ब्रांड लॉन्च करता है, कोई इंस्टाग्राम पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई घर से बैंकिंग बिजनेस चला रहा है। इन कहानियों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। पहले बिजनेस का मतलब था बड़ी दुकान, लाखों रुपये, बहुत स्टाफ। आज सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट, अच्छा आइडिया से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। जैसे

डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलैंसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, इनमें शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आज अच्छी पढ़ाई के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं है, और नौकरी मिलने के बाद भी ले ऑफ, ट्रांसफर, जॉब प्रेशर जैसे चैलेंजेस बने रहते हैं। इसलिए कई यूथ सोचते हैं दूसरों के भरोसे रहने से अच्छा है खुद कुछ बनाया जाए। आज का यूथ सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, वो वही काम करना चाहता है जिसमें उसे खुशी मिले। जैसे जिसे फोटोग्राफी पसंद है वो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर देता है, जिसे खाना बनाना पसंद है वो होम किचन शुरू कर देता है, जिसे फिटनेस पसंद है वो ऑनलाइन फिटनेस कोच बन जाता है। नौकरी में अक्सर सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन बिजनेस में कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आइडिया अच्छा हो और मेहनत लगातार हो तो छोटा बिजनेस भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी होता है। आज का यूथ सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता, वो समाज में बदलाव भी लाना चाहता है, जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडुकेशन स्टार्टअप्स, हेल्थ स्टार्टअप्स। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। आज भारत में स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा अवेयरनेस और काफ़ी हेल्पफुल तरीके भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स, प्लान्स, इनक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप और फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को आगे बढ़ने का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देते हैं। पहले कस्टमर्स अपने एरिया या सिर्फ अपने शहर तक ही लिमिटेड थे, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से इंडिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेची जा सकती है। यानी एक छोटे शहर का युवा भी दुनिया तक पहुंच सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने से व्यक्ति सिर्फ बिजनेस नहीं सीखता, बल्कि वो सीखता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट, यानी खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, पहले ना असफल होना शर्म की बात मानी जाती थी, लेकिन आज लोग कहते हैं फेल फर्स्ट लर्न फास्टर, यानी गलती से सीखना भी सक्सेस होने की जर्नी का हिस्सा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान भी नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया देखकर बिजनेस शुरू कर देना सही नहीं, काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। एवरी मंथ फिक्स्ड इनकम नहीं होती, शुरुआत में लॉस भी हो सकता है, लंबे टाइम तक पेशेंस रखना पड़ता है, हर डिसीजन की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, लगातार नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर बनने से पहले सही प्लान, बाजार की समझ और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब युवा क्या सीख सकते हैं? पहले स्किल सीखिए, फिर मार्केट को समझिए, छोटी शुरुआत कीजिए, गलतियों से सीखिए और पेशेंस रखिए। ऑनेस्टी एंड क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मेरी राय तो यही है, लगातार सीखना और मेहनत करना। तो दोस्तों, आज का यूथ एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ कोई जॉब नहीं, पहचान बनाना चाहता है। वो सिर्फ सैलरी नहीं, वैल्यू क्रिएट करना चाहता है। वो सिर्फ सपने देखना नहीं, उन्हें सच करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी एक बिगनर था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने शुरुआत करने की हिम्मत की। तो लास्ट में एक छोटी सी सुंदर सी लाइन सुनाना चाहूंगी कि नौकरी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, कि नौकरी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन सही सोच, मेहनत और नवाचार कई बार ऐसी राह भी बना देते हैं जिस पर दूसरे लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

0: दोस्तों, मुझे पता है आप सभी आज के प्रोग्राम बिंदास बोल का काफी देर से वेट करे होंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक इतना जरूरी है कि मैं तो ये कहूंगी कि उस पर तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो टॉपिक ये है कि घर में अकेले होने पर यूथ आखिर क्या क्या करता है। कोई कुछ नहीं करता, कोई बहुत कुछ करता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन क्या करता है। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे तीन लड़कियाँ खड़ी हैं, तीन चार ज़्यादा ही हैं बल्कि। तो चलिए एक बार उस ग्रुप के पास चलते हैं और उनसे इस टॉपिक पर ढेर सारी मज़ेदार बातें करते हैं। हेलो एवरीवन,
1: हेलो
2: हेलो
3: हेलो।
1: मैं आरजे वंशिका हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युवाणी प्रोग्राम से हूँ। और आज मैं एक बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पे आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।
3: यस बिल्कुल।
2: नहीं नहीं हम तो नहीं है,
1: अरे
2: सॉरी।
4: अरे है, ये बस ऐसे ही बोल रही है।
1: अच्छा चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि घर में अकेले होते ही आप क्या क्या करते हैं।
3: कुछ नहीं।
4: AC 22 पे चला के और सो जाते हैं।
2: हाँ यही।
4: अच्छा मैम, आप इसको
1: नहीं, नहीं,
4: कहीं
1: नहीं।
4: डालोगे, इसके बारे में घर वालों को पता चल जाए तो घर में जांच आयोग बैठ जाएगी मैडम।
3: बिल्कुल, तो मुझे पहले बता दो
2: मैडम, ये तो सबसे पहले किचन जाती है।
3: तुम हर बात में ले दे के खाना ही क्यों ले आते हो?
4: क्योंकि जिंदगी में दो ही चीजें असली खुशी देती है, खाना और ये पता चलना कि खाना भी बचा हुआ है।
3: और अगर खाना ना बचा हो
4: तो फ्रिज खोलकर 5 मिनट तक उसे देखते हैं।
3: क्यों?
4: इस उम्मीद में कि शायद फ्रिज को हमारी भावनाओं पर दया आ जाए और अंदर से पिज्जा पैदा हो जाए।
2: जैसे ही घर वाले बाहर निकले, दरवाजा बंद, फिर 2 मिनट की शांति
3: और फिर हमारी ही आत्मा कहती है
2: अब आया मजा,
3: आया मजा।
1: अच्छा सबसे पहले क्या होता है?
3: म्यूजिक ऑन,
2: वॉल्यूम इतना ही कि गाना हम नहीं,
4: पूरा मोहल्ला सुनता है।
1: और अगर पड़ोसी दरवाजे पे आ जाए
3: तो क्या? तुरंत वॉल्यूम कम।
2: क्यों? क्योंकि हम बहादुर है, लेकिन पड़ोसी से पंगा लेने जितने बहादुर नहीं।
3: फिर शुरू होता है दूसरा खेल, मिरर।
2: जी मैडम, मिरर सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं होता।
3: तो फिर?
4: अरे यार, वो हमारा
2: करियर काउंसलर
4: नहीं,
2: मैरिज ब्यूरो
4: नहीं,
3: वो हमारा पूरा ऑडियंस होता है।

0: अच्छा एक सवाल और कि आप अकेले में मिरर के सामने क्या करते हैं?
1: पहले हेयर स्टाइल, फिर स्माइल, फिर सीरियस फेस, फिर हीरोइक लुक, फिर अचानक।
2: हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल।
3: लेकिन चैनल होता है?
1: नहीं।
3: सब्सक्राइबर्स?
1: नहीं।
0: कैमरा?
1: नहीं।
0: तो फिर
1: कॉन्फिडेंस भरपूर होता है।
3: मैं तो अकेले में इमेजिनरी इंटरव्यू देती हूँ।
0: वाह, मतलब?
3: मतलब खुद ही इंटरव्यूअर, खुद ही कैंडिडेट और खुद ही जज।
0: वाह। पहला सवाल, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? फिर खुद ही जवाब, मैंने आज अलार्म बंद करके वापस सोने के बावजूद समय पर उठने की कोशिश की।
1: अच्छा, तो फिर उठी या नहीं?

0: नहीं बिल्कुल भी नहीं।
1: तो ये अचीवमेंट कैसा?
0: कोशिश तो की थी ना पर।
1: अरे भाई मैम, लेकिन असली विलन है ना वो फोन होता है। वो कैसे?
0: हम बोलते हैं कि बस 5 मिनट और फिर क्या, इंस्टाग्राम देखते ही टाइम तो यूं ही निकल जाता है।
1: और फोन बोलता है, आ जा बच्चा, आज तुझे 4 घंटे की सैर कराता हूँ। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर अचानक आपने 2 घंटे 57 मिनट स्क्रीन टाइम इस्तेमाल किया है।
0: फिर हम फोन को ही दोष देते हैं कि तू ही खराब है।
1: और अगले दिन फिर बस 5 मिनट और। अकेले घर में मेरा फेवरेट है कुकिंग।
2: लो मैडम, ये मास्टर शेफ की आत्मा।
1: अच्छा तुम खाना बनाती हो?
3: नहीं, मैं आपदा को अवसर में बदलना जानती हूँ। मम्मी के ना होने का जो भरपूर फायदा मैं उठाती हूँ उसकी तो आप मुझसे पूछे ही मत।
1: अच्छा जैसे?
3: जैसे देखिए, ब्रेड मिली तो सैंडविच बना लिया, नमकीन मिली तो स्नैक, मैगी तो खैर मास्टर शेफ तो मैं हूँ ही ना, और बिस्कुट मिला तो फिर यू नो डेजर्ट।
1: वाओ,
0: कुछ भी ना मिला
3: तो फिर पानी पीकर बोलती हूँ कि आज डिटॉक्स करेंगे।

0: अच्छा एक और जबरदस्त चीज होती है।
1: क्या?
0: जब घर में अकेले होते हैं तो अचानक कमरे की सफाई करने का मन करता है, ऐसा होता है आपके साथ?
1: है क्या सच में?
2: हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब मम्मी पापा घर पर ना हो
0: या फिर मम्मी पापा वापस आने वाले हो।
3: हाँ कह सकते हैं।
4: हाँ घड़ी देखी, अरे 10 मिनट में मम्मी आ जाएगी।
1: फिर कपड़े बेड से चेयर पर,
2: चेयर से टेबल पर,
4: टेबल से फिर बेड पर,
0: और फिर लास्ट में
5: कमरा पहले से ज्यादा गंदा दिखाई देता है और वाहियात भी।
1: फिर ब्लैंकेट डालकर बोलते हैं बस स्थाटिक डेकोरेशन है।
0: लेकिन आप या हर यूथ अकेले में एक बहुत बड़ा काम करता है, फ्यूचर प्लानिंग। क्या सही बोला मैंने?
2: हाँ बिल्कुल। जैसे कल सुबह 5 बजे उठूंगी, डेली पढ़ूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, फोन कम चलाऊंगी और क्या हेल्थी खाना खाऊंगी।
1: और फिर सुबह अलार्म बजता है,
2: हम अलार्म बंद करते हैं
4: और कहते हैं
5: इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई।
1: लेकिन अकेले घर में एक चीज ऐसी भी होती है जिससे हम सब डरते हैं।
4: बिल?
1: नहीं,
2: रिजल्ट।
1: अरे घर में रिजल्ट का क्या काम भाई।
0: फिर
1: किचन से अचानक कोई आवाज आना।
4: हाँ जैसे थक या फिर ग्लास का गिरना।
0: फिर सब चुप हो जाते हैं।
4: खड़ू। मैं नहीं जा रही फिर वापस रसोई में।
0: क्यों?
4: क्योंकि अगर भूत हुआ तो?
2: और अगर बिल्ली हुई तो?
4: तो भी मैं नहीं जा रही। बिल्ली भी मुझको देखकर डर सकती है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रही।

0: अच्छा सच बताऊं, घर में अकेले होते ही हर कोई या हर यूथ एक्टर बन जाता है, है ना?
1: हाँ, इमेजिनरी एक्टर आर्ग्यूमेंट, लाइक अगर किसी से बहस हो चुकी है लेकिन असली जिंदगी में नहीं जीत पाते तो घर आकर रिहर्सल शुरू हो जाती है। देखिए, अगर वो मुझे ये बोलती तो मैं उसे ये बोलती।
0: ओ शिट, ये पॉइंट बोलना तो मैं भूल ही गई, ये बात घर आके याद आती है रिहर्सल करते टाइम,
2: फिर आधे घंटे बाद वाह क्या जवाब दिया था मैंने
0: लेकिन सामने वाला वहाँ था ही नहीं।
2: कोई बात नहीं, कम से कम इमेजिनरी दुनिया में हम हमेशा जीतते हैं।
0: बिल्कुल,
2: सॉरी। लेकिन पता है, इन सारी मजेदार चीजों के पीछे एक प्यारी सी बात है। जब हम घर में अकेले होते हैं तब हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे होते, ना हमें कोई जज कर रहा होता है, ना कोई हमारी पर्सनैलिटी देख रहा होता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही होते हैं।
0: कभी हम गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी बेवजह हंसते हैं, कभी चुपचाप बैठे रहते हैं, और कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं।
1: तो शायद यही हमारा असली वर्जन है।
0: तो आज का छोटा सा मैसेज यही है, घर में अकेले रहना सिर्फ बोर्डम नहीं है, कभी कभी ये मौका है खुद से मिलने का,
1: और मैम थोड़ी देर फोन को खुद से दूर रखने का,
2: अपने बारे में सोचने का,
1: अपने शौक पूरा करने का।
0: और मैम मेरा भी एक मैसेज है।
2: बोलो भाई बोलो।
0: कि अगर आप घर में अकेले हो तो बार बार फ्रिज खोल के ना देखे, आपके बार बार फ्रिज खोलने से आपकी मनपसंद चीज उसके अंदर नहीं आ पाएगी। आप रसोई में जाएं और अपने लिए एक मैगी बना ले अच्छे से।
2: चुपचाप ये क्या था, आप जाए सच्चा तो खुद खाना बना के खा ले।
0: एक मैगी बनाए
2: से पेट भर जाएगा आपका।
1: नहीं, मुझे तो है ना डेढ़ लगती है, दो ज्यादा जाती है और एक कम पड़ जाती है।
0: पर डेढ़ फिर आपको कच्ची खानी पड़ेगी, वो आपकी सेहत के लिए लाभदायक नहीं है।
1: डेढ़ कच्ची क्यों खानी है?
0: ये बस क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन है, आप समझ नहीं रहे हो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो तुम्हें समझाना नहीं आ रहा है।
2: <खुद ही चो। laughs>
3: हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की सबसे बड़ी सीख है, दुनिया के सामने थोड़ा संभल कर जीना ठीक है, लेकिन अपने कमरे में लौटकर इतना भी मत संभलो कि खुद के साथ हंसना ही भूल जाओ। कभी बिना वजह गाइए, कभी अकेले डांस कीजिए, कभी मिरर के सामने बेवकूफ बनिए, कभी फोन किनारे रखकर चुप बैठिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जहाँ ऑडियंस कोई नहीं और खुशी पूरी तरह आपकी हो
0: और खाना भी आपका हो। अरे बस कर भाई, बस कर। ओके मैम, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग अस। हंसते रहिए,
1: मस्त रहिए
2: और अपने असली वर्जन को कभी मत खोइए।
0: हाँ तो दोस्तों, मुझे बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके। मैं यही चाहूंगी कि अगली बार फिर मिलूं मैं आपसे।
1: श्योर श्योर
2: श्योर, क्यों नहीं, प्लीज आप हमारे पास ही रह जाइए।
4: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: बात करके
1: आज कभी नहीं मिले इतने यंग, हमें तो बहुत मजा आया।

0: हाँ वैसे हमें कोई पूछता ही नहीं है। असली औकात घर वाले तो पूछते नहीं है, कोई तो पूछ रहा है।
1: किसी ने हमारे ये भाई फालतू जी जो काम बता दिए कि तुम नारे कर रहे हो।
0: ये एक आरजे ही कर सकता है।
2: आपके फालतू बातों को आज मैं इतने अच्छे लेवल
0: सर पे लेके आना।
3: सो थैंक यू वेरी मच।
2: ओके बाय गाइस,
0: बाय,
2: टाटा,
0: सी यू,
4: सी यू टुमारो।
2: ओके
4: असली
2: प्रेशर मत डालो मुझ पे।
0: वो प्रिंसेस है, वो डॉल हाउस में रहती है।
2: ओके।

हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम। आई होप आपको आज का प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा और आपने गानों को तो काफी एंजॉय किया होगा। तो समय आ गया है अब आप सभी से विदा लेने का, तो अपनी दोस्त आरजे वंशिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युववाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।

0: अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है।
1: युवानी कार्यक्रम में

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर

0: किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले दो वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण गोवा केरलम माहे मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। श्रोताओं अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:45 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 का, आकाशवाणी जयपुर से। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00 का। 7:30 का समय रहेगा कस्टमाइज स्पॉन्सर प्रोग्राम डिपार्टमेंटल ऑफ जस्टिस का। रात 8:00 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा का। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:15 से। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा रात 11:00। आकाशवाणी दिल्ली से और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

हमारी कल की सभा की शुरुआत होगी सवेरे 5:53 से। हिंदी में समाचार का समय रहेगा सवेरे 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम वंदनवार चिंतन का समय रहेगा 6:05 का। कार्यक्रम नमस्कार अलवर आप सुनेंगे सवेरे 7 बजे। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 का। समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, समय रहेगा सवेरे 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे।

8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे और दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:10 का, 10:01 का, 11:01 का, दोपहर 12:05 का, 12:16 का, 1:05 का और 2:30 का। अंग्रेजी समाचार और दोपहर समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र सेनाओं को संदेश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 का। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा सवेरे 6:00 शाम 6:10 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 का आकाशवाणी जयपुर से। शाम 7 बजे का समय रहेगा 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के श्री माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश का। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:45 का। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना सरगम की आवाज में फिल्म हीरो नंबर 1 के इस गीत के साथ। गीतकार है समीर और संगीत है आनंद मिलिंद का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हल्का याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं फिल्म बादशाह से ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत है अनु मलिक का।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें यूसीसी ड्राफ्ट, राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाले ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के भूमि आवंटन नियमों में भी बदलाव संबंधी निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 यानी यूसीसी का मसौदा मंजूर कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि इस प्रस्तावित मसौदे के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लेवन संबंधी मामलों में पूरे राज्य में एक समान कानून लागू किए जाएंगे। हालांकि आदिवासी समुदाय के पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
3: इसमें मुख्य रूप से विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित

0: सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
1: राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। श्री पटेल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और हरित आवरण बढ़ाना है।
0: इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मांड पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उसके अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
1: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवा नियम 1951 में संशोधन किया गया है। मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधु को भी अब अनुकंपा नियुक्ति का फायदा मिल सकेगा। सरोगेट माताओं को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्त में 2 साल की छूट मिल सकेगी। वहीं एकल महिलाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 की बजाय 6 चरणों में दी जाएगी।
2: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
1: पीएचडी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्णय को लेकर ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई गई थी। इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इससे संबंधित प्रावधानों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। राज्य के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई इस लॉटरी प्रक्रिया के साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जयपुर स्थित मुख्यालय में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में ये लॉटरी निकाली गई। इसके अनुसार 309 शहरी निकायों में 50 पद अनुसूचित जाति, 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 188 निकायों के प्रमुख पद अनारक्षित रखे गए हैं। अनारक्षित पदों पर किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगमों में महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं कोटा नगर निगम का मेयर पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया। अजमेर और भरतपुर में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। वहीं नए बने नगर निगम भीलवाड़ा, अलवर और पाली में भी महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। मीडिया से बातचीत में स्वायत्त शासन मंत्री श्री खर्रा ने बताया कि समय की कमी के बाद भी इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया गया है।
3: समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार एसआईआर हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू। 6 नगर निगमों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित हुए हैं। 7% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
1: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस बार आरक्षण तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूले पर विशेष ध्यान रखा गया।
4: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 यूएलबीज में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी, किस वर्ग का प्रत्याशी ये सब

0: भी आज क्लियर हो गया है।
1: निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब 17 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 100 से अधिक कलाकारों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में हुए समारोह में वर्ष 2024-2025 के लिए ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कला रूपों के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ संवाद किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में श्रीमती सीतारमण ने राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के स्टार्टअप फाउंडर्स और युवा उद्यमियों को वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे देश के समक्ष बात करने का अवसर मिलना चाहिए।
3: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डैश में 25-30 स्टार्टअप जिनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहां अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल क्रांति के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही इस पहल से लगभग 75,000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर इलाज बहुत जरूरी है। कमजोर दृष्टि के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसी सोच के साथ आंखों की जांच और निशुल्क चश्मा वितरण की ये मुहिम शुरू की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। लंबे अरसे के इंतजार के बाद जैसलमेर में मॉनसून ने दस्तक दी है। अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई, इससे गर्मी और उमस से तो लोगों को राहत मिली है। वहीं खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी ये बारिश उपयोगी साबित हो रही है। नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक से पशुपालकों को भी राहत मिली है। गड़ीसर सरोवर में पानी आने से नौकायन से जुड़े लोगों में भी उत्साह का माहौल है। इस बीच हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में पौधे लगाए जा रहे हैं।

0: इस बार जिले में 46,95,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन विभाग को 32,53,000, पंचायती राज विभाग को 4,12,000, शिक्षा विभाग को 4,52,000 और यूआईटी को 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वन विभाग ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे अपनी नर्सरियों में तैयार किए हैं। मरुधारा की धरोहर नगरी जैसलमेर विकास के एक नए अध्याय की साक्षी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं, आकर्षक वास्तुकला, बेहतर यातायात प्रबंधन और विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाओं के साथ किया गया है। लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर रेलवे स्टेशन के मेगा रीडेवलपमेंट और उसके उद्घाटन के बाद अब स्टेशन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 110 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेलवे की गतिशक्ति यूनिट द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के लिए गर्व और गोडावण संरक्षण अभियान के लिए एक ऐतिहासिक पल सामने आया। रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार 3 नन्हे गोडावण चूजों को इस विशेष टनल में छोड़ा गया है। ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश में गोडावण संरक्षण की दिशा में नई शुरुआत और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में तैयार होने वाले गोडावण के चूजे इंसानों की देखरेख और संपर्क में बड़े होते थे। ऐसे में जब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाता था तो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना उनके लिए चुनौती बन जाता था। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम से जैसलमेर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में माय भारत के युवा स्वयंसेवक और युवा मंडल के सदस्य जुड़े। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक गतिविधि, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का विशेष ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। जैसलमेर से सटी सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाते हुए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये विशेष अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। जैसलमेर के रेगिस्तानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बीएसएफ ने चौकियों पर जवानों की न केवल तैनाती बढ़ाई है बल्कि अग्रिम चौकियों पर नफरी को दोगुना कर दिया है। पारंपरिक रूप से कैमल पेट्रोलिंग और पैदल गश्त में भी इजाफा किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सीमा पर तकनीकी निगरानी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। रात के समय सीमा पार से होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रखने के लिए नाइट विजन डिवाइस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर का उपयोग किया जा रहा है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय किशोर दिवस के अवसर पर किशोर किशोरियों से संबंधित स्वास्थ्य विषयों, एनीमिया, प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और मानव प्रबंधन करने के साथ साथ स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के निर्माण के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी जिया। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावण रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश रा 309 शहरी निकाया और 41 जिला परिषदा रा अध्यक्ष ओहदा सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में राखी जिया यूथ कॉन्क्लेव में नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों बातचीत की नी। समाचारों सागे मैं

0: दर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री सदारत में आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी छी। इनमें समान नागरिक संहिता यूसीसी रो मसौदो और राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत दूजा रोखणा री गैर कानूनी और अंधाधुंध कटाई ने रोकण सारू ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 रा करड़ा प्रावधान रा मसौदा ने मंजूरी दी री छी। इस आगे सरकारी कर्मचारियों रा सेवा नियमा में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजना में सारू जमी आवंटन रा नियमा में बदलाव जुड़िया फैसला ही करी चिया। मीटिंग पाछे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी खबर नवीसा ने मीटिंग में लिया जा फैसला री जानकारी दीनी। श्री पटेल बतायो कि राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल 2026 यूसीसी रा मसौदा ने मंजूरी दे दी रीची है। मसौदा रा तेत ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन जुड़िया मामला में राज्य में एक सरीखा कानून लागू करिया जावेला। हालांकि आदिवासी समुदाय ने यूसीसी रा दायरा में शामिल नहीं करण रो प्रस्ताव है।
1: इसमें मुख्य रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
0: इस आगे राज्य में पर्यावरण ने बचावन सारू वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लावन रो फैसलो ही करी चियो। इन तेत खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल समेत 29 भांतरा रूखड़ा ने संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव करी चियो है।
1: इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है, जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की माड़ पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उसके अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा खबर नवीसा ने बतायो कि कैबिनेट री मीटिंग में राज्य में सरकारी सेवावां सारू सेवा नियम 1951 में बदलाव री मंजूरी दी री जी। इन तेत गुजर चुक्या सरकारी कर्मचारियां रा बेटा री बहु नई सरकारी कर्मचारी री मौत री सूरत में अनुकंपा नियुक्ति रो फायदो देवन रो प्रस्ताव है। कोख में दूजारो बाळक पाळवा वाली मायणा ने 90 दिन रो मातृत्व अवकाश देवन रो प्रस्ताव ही मंजूर करी चियो। सगली सरकारी सेवावां में तरक्की सारू अनुभव री शर्त में 2 साल री छूट देवण और एकली महिलावां ने मिलण वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 री बजाय 6 दौर में दी जावेला।
2: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
0: जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बतायो कि हर घर नलों जल पुगावन रा फैसला रा बारा माए ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई ची ही, जिनरा मकसद न पूरो करण सारू इनु जुड़िया प्रावधाना नई मीटिंग माए मंजूरी दी री ची। राज्य रा 309 शहरी निकायां और 41 जिला परिषदां रा अध्यक्ष ओहदा रा आरक्षण री लॉटरी

आज निकाली ची। स्वायत्त शासन विभाग री ओरू निकाली ची लॉटरी प्रक्रिया सा गई। आवता स्थानीय निकाय चुनाव उंजुड़ी स्थिति साफ की है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा री मौजूदगी माए जयपुर माए निकाली ची लॉटरी रे मुजब 309 शहरी निकाया माए 50 ओहदा अनुसूचित जाति 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग सारू आरक्षित राखी ची है। 188 निकाया रा प्रमुख ओहदा आरक्षित नी राखी जिया है और वठे किणी तबका रो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेला। जयपुर जोधपुर उदयपुर और बीकानेर नगर निगम माए महापौर रो ओहदो अनारक्षित राखी चियो है। कोटा नगर निगम रा मेयर ओहदा सारू अन्य पिछड़ा वर्ग री महिला उम्मीदवारी चुनाव लड़ सकेला। नुआ वणाइजिया नगर निगम भीलवाड़ा अलवर और पाली सागे अजमेर और भरतपुर माए महापौर ओहदा सारू अनारक्षित वर्ग री महिला ही चुनाव लड़ सकेला। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा खबर नवीसा ने बतायो कि समय री कमी रे बावजूद वो काम बेगो पूरो करण री कोशिश करी ची।

0: हजारों आरक्षित राखी ची है। 188 निकायां रा प्रमुख ओहदा आरक्षित नी राखी जिया है और वठे किणी तबका रो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेला। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम माए महापौर रो ओहदो अनारक्षित राखी जियो है। कोटा नगर निगम रा मेयर ओहदा सारू अन्य पिछड़ा वर्ग री महिला उम्मीदवारी चुनाव लड़ सकेला। नुआ वणाइजिया नगर निगम भीलवाड़ा, अलवर और पाली सागे, अजमेर और भरतपुर माए महापौर ओहदा सारू अनारक्षित वर्ग री महिला ही चुनाव लड़ सकेला। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा खबर नवीसा ने बतायो कि समय री कमी रे बावजूद वो काम बेगम बेगो पूरो करण री कोशिश करी ची।
1: समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार एसआईआर हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू। 6 नगर निगमों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित हुए हैं। 60% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
0: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन बतायो कई दफा आरक्षण तय करण में साफ सुथरी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूला रो ध्यान रखी चियो।
2: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहां पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 ULBs में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी, किस वर्ग का प्रत्याशी, ये सभी आज क्लियर हो गया है।
0: निकाय प्रमुख ओहदा रा आरक्षण पाछे अब 17 अगस्त ने वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी निकाली जावेला। जिला माए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकावां रा वार्डा रो आरक्षण जिला कलेक्टर रा लेवल माथे करियो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 132 कलाकारां ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी री छात्रवृत्तियां और पुरस्कार तीना। नई दिल्ली माए भ्या जलसा माए साल 2024-25 सारू संगीत, नृत्य, रंगमंच और कला रा दूजा रूपां सारू इनाम दिया चिया। ई मौके राष्ट्रपति कहो के इनाम कलाकारां री प्रतिभा और समर्पण ने बतावे है। वह कहो के कलाकार देश री समृद्ध संस्कृति ने बचार राखण माए मोटो काम कर रिया है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए है वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और कारोबारियों सागे बातचीत कीनी। इस मौके श्रीमती सीतारमण कहो कि राजस्थान में स्टार्टअप री शुरुआत करने वाला और नौजवान कारोबारियों ने वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था रे बारे में पूरा देश सामी बात करने रो मौको मिलनु चाहिए।
4: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डायस में 25-30 स्टार्टअप जिनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहाँ अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री ने मजबूत बनावन सारू डिजिटल क्रांति माते ही जोर दिनो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद हा। वित्त मंत्री एक गैर सरकारी स्कूल माए राखी जिया तिरंगा यात्रा कार्यक्रम माए शामिल थी। स्वतंत्रता दिवस रे मौके बीकानेर में राख्या जावन वाला राज्य स्तर रा जलसा सारू सगली तैयारियां पूरी भे की है। जिला कलेक्टर निशांत जैन बतायो कि स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा काल खास ड्रोन शो राख्यो जावेला जिनमें एक के सागे 600 ड्रोन उड़ाया जावेला। आर जरिए कला संस्कृति रीति रिवाज

0: अंतरराष्ट्रीय भावनाओं जोड़ी सोहनी आकृतियां बनाई जावेला। इन बीच हर घर तिरंगा अभियान रा तहत राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12 अलवर, जोधपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और चूरू में तिरंगा यात्रा में निकाली ची। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी ची। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावन रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश का 309 शहरी निकाय और 41 जिला परिषद अध्यक्ष ओहदा सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में राखी जा यूथ कॉन्क्लेव में नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों बातचीत की। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से अगला प्रोग्राम किसानवाणी।

0: के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनबा वाला सगला हेतालु श्रोता मने जगा दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठा हुआ वो कार्यक्रम सुने है। आप सगला हेतालु मने गणे मानसू प्रभु दयाल वरमारो राम राम एर न्यून प्रणाम सा। और सागे सागे मनसुनी बहन थाने भी मोकलो मोकलो राम राम सा।
7: खूब खूब राम राम प्रभु भाई सा। और किसान वाणी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता हेतालु श्रोता गणा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
6: काई हाल चाल मनसुनी बहन?
7: हाल चाल तो गणा ही चोखा है भाई सा।
6: और देखो आप बात करा के भाई सेवा सेवा सु मेवा मिला अपना माई थे या किया करे है। और बड़ा बुजुर्ग भी आ बात किया करता और ई वास्ते महापुरुष भी क्यों गए भाई सेवा है सबसु सिरे सर्व सुखों का मूल। दुख छुटे पातक मिटे चितकी भागे भूल, चितकी भागे भूल गणा गुण ऊंचा पावे और देवे आदर दान भलाई सबकी चावे। होत नीच से ऊंच अनंत ही पावे मेवा, राम बक्स हरि भक्त करो सबकी सेवा। मनसुनी बहन सेवा सु मेवा मिले और महापुरुष आई बात की कि भाई प्रकृति के मायने जता भी जिया जून है चाहे रूकड़ो हुए चाहे अपनी धरती माँ हुए चाहे इंसान के प्रति अपने दिलरे मायने हमेशा सेवारो भाव हो।

0: चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र बन गया है।
1: डिजिटल तकनीक किसान ने की प्रकार से मौसम के संदर्भ में लाभ दे सके है?
0: जी हाँ, मौसम की जानकारी खेती के लगभग हर चरण में उपयोगी है। बुआई से पहले किसान वर्षा की संभावना देखकर निर्णय ले सकता है। फसल की अवस्था में सिंचाई की योजना बनाई जा सकती है। वर्षा, तेज हवा, ओलावृष्टि की संभावना होने पर किसान आवश्यक सावधानी बरत सकता है। इसी तरह किसान कटाई के समय भी मौसम का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बारिश की संभावना हो तो किसान समय रहते कटाई और उपज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि किसान भाई हर दिन या कम से कम महत्वपूर्ण कृषि कार्यों से पहले मौसम की विश्वसनीय जानकारी अवश्य देखे ताकि वो होने वाले नुकसान से बचाव कर सके।
1: जी, फसलों के मायने कई प्रकार का जगह कीट और रोग लगे तो कहीं डिजिटल तकनीक से किसान भाई फसल के मायने लागवा वाला जगह कीट और रोग है वहाँ की पहचान भी कर सकेगा?
0: जी हाँ, डिजिटल माध्यम इस क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी हो रहे हैं। किसान फसल में दिखाई देने वाले लक्षणों की स्पष्ट फोटो लेकर कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग या विश्वसनीय डिजिटल कृषि सेवा के माध्यम से सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतना जरूरी है, केवल इंटरनेट पर देखकर स्वयं दवा का निर्णय लेना हमेशा उचित नहीं है। कई रोगों और कीटों के लक्षण कई बार एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए फोटो या डिजिटल जानकारी को ओनली प्रारंभिक सहायता के रूप में ले और आवश्यक होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले।
1: और ये तकनीकी अगर आप बात करें तो सिंचाई के संदर्भ में किसान भाई ने डिजिटल तकनीक को कई फायदे मिल सके है?
0: इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आधुनिक कृषि से सेंसर, मोबाइल की जानकारी और स्वचालित सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे पानी की आवश्यकता होने पर ही सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का बचाव किया जा सकता है। छोटे किसान भी इसका सरल रूप अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान मिट्टी की नमी, फसल की अवस्था और मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई का निर्णय ले सकता है। इससे अनावश्यक सिंचाई कम की जा सकती है, पानी की बचत हो सकती है और फसल को आवश्यकता के अनुसार पानी मिल सकता है। याद रखिए, जितना पानी जरूरी है उतना पानी ही देना आधुनिक कृषि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
1: ड्रोन को उपयोग आजकल किसान भाई है खेती के मायने करे है तो इस संदर्भ में आपसे आप बात जानना चाहूंगा, ड्रोन है कहीं और खेती के मायने को किस प्रकार से किसान भाई उपयोग कर सके है?
0: जी, ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो खेत का ऊपर से निरीक्षण करने में मदद कर सकती है। बड़े स्तर पर ड्रोन का उपयोग फसल की निगरानी, खेत का सर्वेक्षण और कुछ परिस्थितियों में पिड़कनाशी का छिड़काव जैसे कार्यों में भी किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। हालांकि छोटे किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से ड्रोन खरीदना जरूरी नहीं है। जहां कस्टम हायरिंग सेंटर या सेवा के रूप में ड्रोन उपलब्ध हो, वहां किसान सामूहिक या किराए की सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
1: जी, और आप बात करें कि भाई बाजार के संदर्भ में किसान भाई आपकी उपज ने लेर जावे तो कहीं डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसान भाई बाजार की जानकारी भी प्राप्त कर सके है?
0: जी, यह डिजिटल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान अपनी फसल बेचने से पहले विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि उसकी उपज का बाजार में क्या मूल्य चल रहा है। लेकिन केवल एक भाव देखकर निर्णय लेना सही नहीं है। किसान को गुणवत्ता, परिवहन खर्च, मंडी शुल्क, स्थानीय मांग और वास्तविक बिक्री मूल्य जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल जानकारी का उद्देश्य किसान को बाजार में अधिक जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
1: ऑनलाइन सरकारी की योजना है, बाकी जानकारी अगर किसान भाई लेना चाहो तो बिक के मायने की प्रकार से डिजिटल तकनीक है जो की किसान भाई के वास्ते फायदेमंद उसके है?
0: जी हाँ, आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। किसान अपने मोबाइल के माध्यम से योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और स्थिति जैसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतना जरूरी है। किसान भाई किसी भी योजना के लिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करे। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक पासवर्ड या अन्य जानकारी साझा न करे।
1: हर किसान भाई चाहे के भाई मैं खेती के मायने मारी लागत है वह तो कम से कम हुए, लाभ मन ज्यादा मिले, तो किसान भाई की खेत की लागत है वह कम करवा के मायने भी अपनी जगह डिजिटल खेती है या तकनीक है वह किसान भाई ने की प्रकार से मदद कर सके है?
0: जी, तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है, इससे किसान की लागत कम हो सकती है। लेकिन तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मौसम की जानकारी से अनावश्यक सिंचाई या कुछ कृषि

0: कार्यों को गलत समय पर करने से बचा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार कृषि आदानों का उपयोग करने में सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार बाजार के भाव की जानकारी से किसान को अपनी उपज के विपणन संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि उसको किस समय पर और किस मंडी में उसको अपना सामान बेचना है। डिजिटल तकनीक सीधे सीधे लागत कम करने की गारंटी नहीं देती, लेकिन बेहतर निर्णय लेने में मदद करके लागत और जोखिम को कम करने का अवसर देती है।
1: और अपनो देश तो गांव को देश है, गांव को जी आप बात करेंगे कम पढ़े लिखे कोई किसान है, कोई भाई लोग है और वो ये डिजिटल तकनीक को या ये खेती को लाभ लेना चाहो तो वो किस प्रकार से को लाभ उठा सके है?
0: जी बिल्कुल, किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसान को ऐप चलाना नहीं आता तो परिवार का कोई सदस्य, किसान मित्र, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि प्रसार कार्यकर्ता या आसपास का कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। गांव में किसान समूह बनाकर भी डिजिटल जानकारी साझा की जा सकती है। सबसे जरूरी बात है तकनीक से डरना नहीं, धीरे धीरे सीखना है।
1: कोई भाई लोग डिजिटल कृषि ना अपनावे तो भी कम है कोई यहाँ की बात या कोई सावधानियां यहाँ की भी है के जखम किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो किसान को सही स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करे
1: जी।
0: तीसरा, ओटीपी, अपना एटीएम पिन और बैंक पासवर्ड जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करे। चौथा, कृषि दवाओं और उर्वरकों के संबंध में केवल प्रमाणित और विशेषज्ञ सलाह पर ही भरोसा करें। और पांचवा, इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सच ना माने। और अंतिम बात है कि डिजिटल तकनीक को अपने स्थानीय अनुभव और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के साथ जोड़कर उपयोग करें।
1: जी, और आज कोई किसान है डिजिटल खेती की तरफ आना चाहे या डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करे, डिजिटल किसान बनना चाहे तो बी के संदर्भ में अगर आप बात करें तो बी किसान भाई ने खट्टा से शुरुआत करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, मैं किसान को एक बहुत सरल तरीका बताना चाहूंगी। पहला कदम, अपने मोबाइल में मौसम की विश्वसनीय जानकारी देखना शुरू करें। दूसरा कदम, अपनी फसल और क्षेत्र से संबंधित विश्वसनीय कृषि सलाह प्राप्त करें जिससे मिट्टी का प्रकार व जलवायु आदि की जानकारी मिल सके। तीसरा कदम, बुआई, सिंचाई, उर्वरक, कीट रोग और उत्पादन का रिकॉर्ड मोबाइल या कॉपी में जरूर रखे। चौथा कदम, फसल बेचने से पहले बाजार भाव की जानकारी ले। पांचवा कदम, सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करे। और सबसे महत्वपूर्ण, हर नई डिजिटल तकनीक को पहले समझे और फिर अपनाए।
1: बिल्कुल, आप डिजिटल तकनीक के विषय में बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हो। अब आखिर के मैंने कोई यहाँ की बात जबकि छूटगी हुए और किसान आप संदेश के तौर पर बताना चाहो?
0: मेरा किसान भाइयों और बहनों से यही कहना है कि आज खेती में मेहनत के साथ साथ जानकारी और समय पर निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल को केवल बातचीत और मनोरंजन का साधन न समझे, इसे खेती की जानकारी प्राप्त करने का भी माध्यम बनाए। मौसम की जानकारी देखे, बाजार भाव जाने, कृषि विशेषज्ञों की ऑनलाइन सलाह ले, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे और अपने खेत का रिकॉर्ड जरूर रखे। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखें कि डिजिटल जानकारी का उपयोग विवेक और सावधानी के साथ करना है। डिजिटल तकनीक किसान की मेहनत का स्थान नहीं लेती बल्कि किसान की मेहनत को बेहतर निर्णय, बेहतर प्रबंधन और बेहतर योजना से मजबूत करती है। इसलिए किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल तकनीक से डरना नहीं है, इसे धीरे धीरे सीखना है और अपने मोबाइल फोन को इस तरह उपयोग में लेना है कि किसान को लगे कि यह एक चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र है।
1: आधुनिक कृषि के मायने डिजिटल तकनीक को उपयोग ई विषय पर आज अपन जानकारी दे रहा है रेशमा यादव जी, आप रिसर्च स्कॉलर है मंडा भिंडा सोमू जयपुर से कार्यक्रम का मैंने पता रहा और आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, एक वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा।
2: भाई सा, आपने कोरो कोरो धन्यवाद कोनी देवे सा। तो चाला और धन्यवाद स्वरूप सुना एक छोटी सी लोक रचना।

0: को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: हाँ तो मन सुनी बहन, लोक रचना तो आप बहुत ही चौकी सी सुनी, पर अब थोड़ी सी मौसम की जानकारी भी भाई लोगों तक पूर्ति कर दियो।
4: आज रे मौसम रे हाल री अगर आपा भाई साहब बात करा तो आपने जयपुर रो जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। और आपा बात करा अगर कोटा री, कोटा रो भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। जहाँ आपा बात करा हा बीकानेर री, तो बीकानेर रो लगभग अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहवारो अनुमान है भाई साहब।
3: और देखो बरसात रो मौसम है भाई, लोग खेतारे मायने लाग रहा है काम काज के मायने, पर देखो अब घड़ी सारो करण लग रही है। मनसुनी बहन का आज के किसान वाणी कार्यक्रम को टेम अठे ही पूरा हो रही है, तो भाई लोग आज के कार्यक्रम सुनते था का भाई प्रभु दयाल वर्मा
4: और मनस्वनी ने दियो विदा, चाला और करा राम राम सा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना, हल्का इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अवी मामला, सियासी नजरियात, माशियात।

0: mental disorder, and it is sadness or depression is commonly used word among the public. So how do we recognize these signs? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम, दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट अ सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम nervous हो जाते हैं. Sometimes we say that मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. तो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन आल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, I get up in between at night, or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो सेकेंड क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है. And that is a one way of understanding what this is about. Many times, unlike other illnesses, people do report, mere ko bahut depression rehta hai. It should be taken seriously. It's a cry for help that I am not feeling well. Aksar dekha gaya hai ki individuals who do try to commit suicide, they do say, they verbalize their problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize later on. अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. एट टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, वी हैव स्मॉल स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है. दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ, GAD, 7 आइटम, 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आपने से सुना फिल्म कयामत से ये गीत। संगीतकार थे नरेश शर्मा। अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म दाग द फायर से। गीतकार हैं समीर और संगीत है राजेश रोशन का।

कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM एंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा।

और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दाग द फायर से ये गीत। गीतकार थे समीर और संगीत था राजेश रोशन का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का है हमारा ये कार्य।

राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंदना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.1

1.7% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी।

0: लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम।

0: है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां

0: निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है, अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
3: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन

पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा

0: इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवर

0: That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है नया दौर।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है मधुमती।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नख्वानिगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंती माला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: देश में एक दासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
0: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

देवदास के लिए वैजयंती माला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंती माला ने ये कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंती माला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही।

लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना

0: अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धनु, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन?
1: फाउंटेन लावा है। चलत ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाह रे महारानी बाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है पटेरे? एक को समझाए दियो
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर
2: हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंती माला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंतीमाला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंतीमाला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंतीमाला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सावन की फुलवारियां चमन में बहार लाई है, चांद की नजीर किरणों से धुले शबनम के ये मोती हैं, आंचल में सिमटते बूंदों के खजाने, खनक बहारों की पाजीब तारों की, मेहरबान मौसम के शरारे भर देते हैं गीतों मितान मोहब्बत की, पत्थरों में भी तड़प जगा देते हैं, उफ ये मौसम किसे न अपना शैदाई बना दे।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। आप आए तो हवाओं को गुनगुनाना आ गया, आप आए तो कलियों को मुस्कुराना आ गया। ये बरसती फुहारें कहीं प्यास जगाती हैं, कहीं फूल खिलाती हैं। रखा है हमने भी दिल को संभाले कि ये एहसास से खता हो न जाए, रंग मोहब्बत का फसाना मशहूर हो न जाए।

0: सब खताएं बारिशों की हैं, मानो किन मानो, ये बदली का खिलखिलाना, ये आसमां का गुरूर, आंखों में रात का कजरा लगा लाए हो, बूंदियां बरसेंगी, भीगेगी बहार, धीरे धीरे से आरज़ूओं का महताब चमकेगा, करार खो के भी करार आता नहीं, इश्क कहते हैं जिसे, शायद ये वही शय है।
1: छा गए बादल।

रात में आज खामोशियों को बयां होने दो, पास बैठो कि नजरों को यकीन आ जाए। दिल आपका शैदाई है, जाए तो कहां जाए। आज कुछ कहने की रात आई है, बड़ी मुद्दत के बाद ये सावन की घटा छाई है। रंग फूलों का इस तरह सजाया है आपने, जैसे जमीन पर आसमां बिछाया है आपने।

एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के

0: दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी